काहे रे मानचित मैं उद्दम, जाया हर हर जीव प्रया। सैल पत्थर में जंत उपाए, ताका रिजक आगे कर तरिया। मेरे माधो जी सत संगत मिले सो तरिया, गुर प्रसाद परम पद पाया, सूखे काष्ट हरिया रहाओ। जनन पिता लोक सुत बनता, कोई ना के सकी तारिया, सिर सिर जग संभाहे ठाकुर, काहे मन पौ करिया। उड़े उड़े आवे स कोसा, तिस पाछे बचरे शरिया, तिन कवन खलावे कवन चुगावे, मन में सिमरन करिया। सब निधान दा सैठ सिधान, ठाकुर कर तल तरिया। जन नानक बल बल सद बल जाइए, तेरा अंत न पारा वरिया। राग ऐसा महला चौथा, सो पुरख को अंकार सत गुर प्रसाद। सो पुरख निरंजन हर पुरख निरंजन, हर अगम्मा अगम अपारा, सब त्यावे सब त्यावे तुद जी, हर सच्चे सृजनहारा। सब जी तुम्हारे जी, तू जिया का दा तारा, हर त्यावो संतो जी, सब दुख विसारण हारा। हरे आपे ठाकुर हरे आपे सेवक जी, क्या नानक जंत विचारा। तू घट घट अंतर सर्ब निरंतर जी, हर एको पुरख समाणा, एक दाते एक पे खारी जी, सब तेरे चोज विडाणा।

जो सब कोई जन नानक गुण गावे करते के जी जो सबसे का जनोई ऐसा महला चौथा। तू करता सियार मैंडा साई जो तो भावे सोई थी सी जो तू दे सोई हो पाई रहाओ। सब तेरी तू सबनी त्याया जिसनों कृपा करें तिन नाम रतन पाया। गुरमुख लादा मन मुख गवाया तुझे आप विछोड़िया या मिलाया। तू दरियाओ सब तुझ ही माँ है तुझ बिन दूजा कोई ना है। जी जंत सब तेरा खेल विजोग मिल विछुड़िया संजोगी मेल। जिसना तू जाने सोई जिन जाने हर गुण सद ही आख वखाने। जिन हर सेवया तिन सुख पाया सहजे ही हर नाम समाया। तू आपे करता तेरा किया सब होए तुद बिन दूजा अवर न कोए। तू कर कर वेख्या जाने सोए जन नानक गुरमुख प्रगट होए आसा महला पहला। तित सरवरडे पहिले निवासा पानी पावक तने किया पंकज मोह पगनी चाले हम देखा तें डूबी अले। मन एक ना चेत समूड मना हार बिसरत तेरे गुण गले आ रहा हो। ना हो जति सती नहीं पड़या मूर्ख मुगदा जन्म पया प्राणवत नानक तिन की शरणा जिंतु नाहीं विसरया या सा महला पंजवा। पई प्रापत मानुख दे हुरिया गोबिंद मिलन की ये तेरी बरिया। अवर काज तेरे कितै ना काम मिल साध संगत भज केवल नाम। सरंजाम लाग पवजल तरण कै जन्म वृथा जात रंग माया कह रहाओ। जप तप संजम धर्म ना कमाया सेवा साधना जानिया हर राया। कहो नानक हम नीच कर्मा शरण परे की राखो शर्मा।

बचाव। सुखी बसै मोरो परवारा, सेवक सेख सबह करतारा। मोर अच्छा निज कर दे करे, सब बैरन को वास संगरे। पूरन होए हमारी आसा, तोर भजन की रहे प्यासा। तुम्हें छाड़ कोई अवर ना त्याऊं, जो बर चाहूं सो तुम ते पाऊं। सेवक सिख हमारे तारिये, चौन चौन शत्रु हमारे मारिये। आप हाथ दे मुझे उबरे, मरण काल का त्रास निवरे। हो जो सदा हमारे पच्छा, श्री अस्तु जो करो रच्छा। राख लियो मोय राखनहारे, साहिब संत सहाय प्यारे। दीन बांध दुष्टन के हंता, तुम हो पुरी चतुर दशकंता। काल पाए ब्रह्मा बाप धरा, काल पाए शिव जू अवतरा। काल पाए कर बिशन प्रकाशा, सकल काल का किया तमाशा।

हमारा। जवन काल सब जगत बनायो, देव दैन जशन उपजायो। आद अंत एक अवतारा, सोई गुरु समझो हमारा। नमस्कार तिस ही को हमारी, सकल पर जाजन आप सवारी। सिवकन को शिव गुण सुख दियो, शत्रुन को पलमो बद कियो। काट काट के अंतर की जानत, पले बुरे की पीर पछानत। चीटी ते कुंचरे असूला, सब पार कृपा दृढ़ कर फूला। संतन दुख पाए ते दुखी, सुख पाए साधन के सुखी। एक एक की पीर पछाने, काट काट के पाट पाट की जाने। जा बुध करख करा कर तारा, प्रजा तर तब दे अपारा। जब आकर्ष करत हो कब हूँ, तुम मैं मिलत ते तर सब हूँ। जेते बदन श्रेठ सब तारे, आपे अपने बूझ उचारे। तुम सब ही तेरे तन रालम, जानत भेद भेद अरे आलम। निरंकार निर्वकार निर्लंब, आदि नील अनादि असंभ। ताका मोड़ उचारत बेदा, जाको पेव न पावत बेदा। ताको कृपा हन अनुमानत, महा मोड़ कश भेद न जानत। महादेव को कहत सदा शिव, निरंकार का चीनत न पेव। आप अपने बुद्ध है जेती, वर्णत भिन्न भिन्न तुय तेती। तुमरा लखा न जाए पसारा, कह बिद सजा प्रथम संसारा। एक रूप अनूप स्वरूपा, रंग पयो राव कई पूपा। अंडज जे रज से तज कीनी, उत्पुज खान बहुर रज दीनी। कहो फूल राजा है बैठा, कहो सिमट पयो शंकर कैठा। सगरे श्रेष्ठ दिखाए अचंपव, आज जुगा स्वरूप से अंपव। अब रक्षा मेरी तुम करो, सेखियो बारे सेख संघरो। दुष्ट जिते उठवा तुत पाता, सकल मलेश करो रणकाता। जे अस तुझ तव शरणी परे, तिनके दुष्ट दुगत है मरे। पुरख जवन पग परे तिहारे, तिनके तुम संकट सबटारे। जो कल को एक बार ते आए हैं, ताके काल निकट नहीं आए हैं। रक्षा होए ताए सब काला, दुष्ट वरिष्ठ ट्रै तत्काला। कृपा दृढ़ तन जाए न हरि हो, ताके ताप तनक मोह हरि हो। रिद सिद घर मो सब होई, दुष्ट शास सके न कोई। एक बार जिन तुम्हें संभारा, काल फांसते ताहि उबारा। जिन नर नाम तिहारो कहा, दार दुष्ट दुख ते रहा। खड़क के तमें शरण तिहारी, आप हान दे ले बारी। सर्ब ठौर मोह सहाय, दुष्ट दुख ते ले बचाई सवैया। पाए गहे जब ते तुमरे, तब ते को आंख तरे नहीं आने। राम रहीम पुराण कुरान, अनेक है मत एक न मान्यो। सिमरत शास्त्र वेद सब है, बहुभेद कहे हम एक ना जानियो। श्री असबान कृपा तुमरी कर, मैं ना कहे हो सब तोय बखान्यो। दोहरा सगल द्वार को छाड़ के, गयो तुहारो द्वार। बाएं गहे की लाज वस, गोबिंद दास तुहार। राम कली महला तीजा, आनंद को अंकार। सत गुरु प्रसाद, आनंद पया मेरी माए। सत गुरु मैं पाया, सत गुरता पाया सहज सेती। मन वजियां वाधाइया, राग रतन परवार परियां। शब्द गावने आईया, शब्दोता गावो हरि केरा। मन जनी वसाया, कहे नानक आनंद हुआ। सत गुरु मैं पाया,
ਏ ਮਨ ਮੇਰੇ ਆ ਤੂੰ ਸੁਧਾਰੋ ਹਰ ਨਾਲੇ, ਹਰ ਨਾਲ ਰਹੋ ਤੂੰ ਮਨ ਮੇਰੇ ਦੁੱਖ ਸਭ ਵਿਸਾਰਨਾ। ਅੰਗੀਕਾਰਿਓ ਕਰੇ ਤੇਰਾ ਕਾਰਜ ਸਭ ਸਵਾਰਨਾ, ਸਭਨਾ ਗੱਲਾਂ ਸਮਰੱਥ ਸੁਆਮੀ, ਸੋ ਕਿਉਂ ਮਨੋ ਵਿਸਾਰੀ। ਕਹੇ ਨਾਨਕ ਮਨ ਮੇਰੇ ਸਧਾਰੋ ਹਰ ਨਾਲੇ, ਸਾਚੇ ਸਾਹਿਬਾ ਕਿਆ ਨਾਹੀਂ ਕਰ ਤੇਰੇ। ਘਰ ਤਾਂ ਤੇਰੇ ਸਭ ਕਿਛ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਸੋ ਪਾਵੇ, ਸਦਾ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਤੇਰੀ ਨਾਮ ਮਨ ਵਸਾਵੇ। ਨਾਮ ਜਿਨ ਕੈ ਮਨ ਵਸਿਆ ਵਾਜੇ ਸ਼ਬਦ ਕਨੇਰੇ, ਕਹੇ ਨਾਨਕ ਸੱਚੇ ਸਾਹਿਬ ਕਿਆ ਨਾਹੀਂ ਕਰ ਤੇਰੇ, ਸਾਚਾ ਨਾਮ ਮੇਰਾ ਆਧਾਰੂ। ਸਾਚ ਨਾਮ ਆਧਾਰ ਮੇਰਾ ਜਿਨ ਭੁੱਖਾ ਸਭ ਗਵਾਈਆਂ, ਕਰ ਸ਼ਾਂਤ ਸੁਖ ਮਨਿਆਏ ਵਸਿਆ ਜਿਨ ਇੱਛਾ ਸਭ ਪੁਜਾਈਆਂ। ਸਦਾ ਕੁਰਬਾਨ ਕੀਤਾ ਗੁਰੂ ਵਿਟੋਂ ਜਿਸ ਦੀਆਂ ਇਹ ਵਡਿਆਈਆਂ, ਕਹੇ ਨਾਨਕ ਸੁਣੋ ਸੰਤੋ ਸ਼ਬਦ ਰੂਪੇ ਯਾਰੋ, ਸਾਚਾ ਨਾਮ ਮੇਰਾ ਆਧਾਰੂ। ਵਾਜੇ ਪੰਚ ਸ਼ਬਦ ਤਿਤ ਕਰ ਸੁਭਾਗੇ, ਕਰ ਸੁਭਾਗੇ ਸ਼ਬਦ ਵਾਜੇ ਕਲਾ ਜਿਤ ਕਰ ਤਾਰੀਆ। ਪੰਚ ਦੂਤ ਤੁਧ ਵਸ ਕੀਤੇ ਕਾਲ ਕੰਟਕ ਮਾਰਿਆ, ਤੁਰ ਕਰਮ ਪਾਇਆ ਤੁਧ ਜਿਨ ਕਉ ਸੇ ਨਾਮ ਹਰ ਕੈ ਲਾਗੇ।

जेतो तुम्हें अराधा नानक मंगे दान प्रभ रेन पागो सादा कबीर मान पंखी पयो ओड ओड दाह देश जाए जो जैसी संगत मिले सो तै सो फल खाए कबीर मान पंखी पयो ओड ओड दाह दिश जाए।

परम सत्कार जो गुरु पैरिसा संघ जी, बहुत वडभागे हो जो जिंदगी दे कुछ सवास सतगुरु गुरु ग्रंथ साहिब दे चरणां च बैठ के बतीत तुसी कर रहे हो। ये सवास सफले हो रहे ने, सतगुरु कृपा करन तुहाडियां हाजरियां कीतियां होईयां अरदासां पाया होया गुरु की गोलक बिच किरत कमाई बिचो तेल फुल सतगुरु अपने दर प्रवान करन। आओ सारी समुची संगत झुकाओ शीस बख्शो आगे आ बुलाओ फतेह। वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। एक शायर लिख रहा है कहिंदा बारी ते बलिहारी जावां कादर दियां कुदरतां दे जिस दियां रहमतां ने बनाया तुच्छ बंदा है। बारी बारी हड्डियां दे जोड़ जोड़े जुगत नाल उपरो मनारा सोहना फेरिया खूब बरंदा है। बंदा बन के रवे ता ओदा बंदा है, नहीं ता

वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। सतगुरां दी पावन हजूरी अंदर जुड़ बैठे गुरु प्यारे गुरु सवारे अति सत्कार योग सतसंगी जनों, जिथे आप जिया ने सत्कार तो ढाडी जिथे पासों इतिहास सरवण किया है, सरबत दे भले की अरदास उपरंत सतगुरां ने जो पावन मुख वाक की दात बख्शिश की है, पवित्र उपदेश आप संगत ने सरवण किए हैं। इस वीकेंड ते तीन श्री अखंड पाठ साहब गुरद्वारा साहब विखे आरंभ होणगे, जिन्हां दे भोग एतवार सवेरे 9:30 पैणगे, उपरंत दीवान सजणगे। नगर निवासियों ते परिवारों वालों बेनती, आप जी ने दर्शन देने की कृपालता करनी जी। हुण गुरु ग्रंथ साहब जी की पावन सरूपां की सेवा संभाल अते सोहला साहब पावन बाणी के पाठ होणगे। समाप्ति तो उपरंत आप संगत ने कड़ा प्रसाद देख लिया कि गुरु के लंगर विच्चों प्रसादा छक के जाने की कृपालता करनी जी। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। सोहला रागुड़ी दीप की महला पहला, एक ओंकार सतगुरु प्रसाद चय कर कीरत आखिए, करते का होए बचार, तित कर गाओ सोहला सवेरे सृजनहारो। तुम गावो मेरे निरपो का सोहला, हमारे जित सोहेले सदा सुख होए रहाओ, नित नित जीड़े संभाली देखेगा देवनहार। तेरे दान कीमत ना पवे, तुस दाते कौन शुमार, समत सहा लिखिया मिल कर पाओ तीर। देहो सजण आसी सड़िया, ज्यो होवे साहब सिउ मेल, कर करे हो पहुचा सदड़े नित पवन, सदन हारा सिमरिए नानक से ते मन राग आसा महला पहला। छे कर छे गुर छे उपदेश, गुर गुर कोवे से अनेक, बाबा जहें कर करते कीर्त होए, सो कर रख वडाई तुए रहाओ। विसोए चसियां कड़ियां पहरां, थिती वारी मां हो असूरज को रोते अनेक, नानक करते के केते वेस राग तना श्री महला पहला। गगन में थाल रव चंद दीपक बने, तारका मंडल जनक मोती, तू माले आन लो पवन चवरो करे, सकल बन राय फूलंत ज्योति। कैसी आरती होए पव खंडना, तेरी आरती अनहता शब्द वाजंत पेरी रहाओ। सहस्तव नैन नान नैन है तोहे को, सहस मूर्त ननायक तोही। सहस पद विमाल नान एक पद, गंध बिन सहस्तव गंध इं चलत मोही। सब में जोत जोत है सोए, तिस दे चानन सब में चानन होए, गुरसाखी जोत प्रगट होए, जो तिस भावे सो आरती होए। हार चरण कमल मकरांत, लोभित मनो वंदिनो मोह आही प्यासा, कृपा जल दे नानक सारं को, हो जाते तेरे नाए वा सारा कौड़ी पूर्वी माला। चौथा काम क्रोध नगर बो परे आ, मिल साधु खंडल खंडा है, पूर्व लिखत रखे गुर पाया, मन हर लियो मंडल मंडा है। कर साधु अंजलि पुन वड्डा है, का डंडौत पुन वड्डा है, रहाओ साकत हर रसाधना जाने आतने अंतर हुमे कंडा है। ज्यों ज्यों चलें चुभै दुख पावे, जमकाल सहे सर डंडा है, हर जन हर हर नाम समाने, दुख जन्म मरण पव खंडा है। अविनाशी पुरख पाया परमेश्वर, बशो बखंड ब्रह्मंडा है, हम गरीब मस्कीन प्रभ तेरे हर राख राख वड वड्डा है। जन नानक नाम आधार टेक है, हर नामे ही सुख मंडा है, राग गौड़ी पूर्वी महला पंजवा। करो बेनंती सुनो मेरे मीता, संत टहल की बेला, यहाँ खाट चलो हर लाहा आगे बसन सुहेला। औद घटे दिन सरहणारे, मन गुरमिल का सवारे, रहाओ संसार बिकार सहसे मैं, तरियो ब्रह्म ज्ञानी। जिस है जगाए पिया वे ए रस, अकत कथा तिन जानी। जा को आए सोई बिहाजो, हर गुरते मने बसेरा, निज घर महल पावो सुख सहजे, बहर न होए गुफेरा। अंतर जामी पुरख विधाते, श्रद्धा मन की पूरे, नानक दास है सुख मांगे, मोको कर संतन की तूरे। अंतर जामी पुरख विधाते, श्रद्धा मन की पूरे, नानक दास एह सुख मांग, मोको कर संतन की तूरे। तो दिया गे अरदास।

पौड़ी सेव की संतोख जिनी सचो सत्याया ओनी मंदे पैन रखियो कस के तुम कमाया ओनी दुनिया तोड़े बंदना पानी थोड़ा खाया तू बख्शीसी अगला निधि बचड़ा सवाया वड्याई वड्डा पाया वड्याई वड्डा पाया।

राजा कूड प्रजा कूड सब संसार कूड मंडप कूड माड़ी कूड वैसनार कूड सोना कूड रूपा कूड पैनहार कूड काया कूड कपड़ कूड रूपा पार कूड मिया कूड बीबी खप होई खार कूड कूड़े ने हो लगा विसरिया करतार किस नाल की जय दोस्ती सब जग चलनहार कूड़ मिठा कूड़ माख्यो कूड़ डोबैपुर नानक खाना बेनती तुझ बा।

पौड़ी नानक तरह जापनी हलता के पारा वारा कराए साक्ति फिर आप कराए मार एक ना उंगली जंजीरियां एक तुरी चढ़े बिस्यार आप कराए करे आप हो कैसो करी पकार।

जो बोले सो निहाल सात श्री अकाल। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।

मत जान सें गली पाया, माल के माने रूप की शोभा, इत विधि जन्म गवाया। ऐब तन चीकड़ो ए मन मींड को,

ईंधन ते बसंतर पगे माटी को जाड़ दाह देश त्यागे ऊपर चरण तले आकाश काटे मैं सिंध की ऊपर गाश ऐसा समरथ हर जियो आप वर्ण ना सकूं जीव भगतन को।

तबलोगां काहे दुख मनया, हम अपता अपनी पत खोई, हमरे खोज परो मत कोई रहा, हम मंदिर

सरब त्याग पाज केवल राम। परम सम्मान योग जुगो जुगे अटल चवर शतर सिंहासन दे मालिक वाली कुल आलम सर्वरे कायनात दीन दुनी दे मालिक शब्द ब्रह्म सतगुरु निमाणिया दे माण नेताणिया दे ताण न्योटिया दी ओट धन धन गुरु ग्रंथ साहिब महाराज सच्चे पातशाह जी तिना दी पावन पवित्र मुबारक गोद अंदर जुड़ बैठे अते चैनल मीडिया दे राही घरां विच बैठ के साहब जी दी पावन अमृतमई मुबारक बाणी नाल सांझ बना रहे गुरु प्यारे गुरु सवारे अति सत्कारयोग सत्संगी जनों वडभागे हाँ जिथे आप जीयां ने गुरु दर दे सत्कारत कीर्तनी जथे पासों पावन बाणी दे शब्द कीर्तन श्रवण कीते ने। आओ कुछ घड़ियां सतगुरां दी पावन बाणी दी विचार नाल जुड़न दा यतन करिए। गुरमत विचारां दी सांझ करन तो पहला गुरु दर दी असूलन मर्यादा नूं बहाल करदिआं अमृत के दाते कलगीधर स्वामी बादशाह दरवेश धन गुरु गोबिंद सिंह साहब महाराज सच्चे पातशाह जी वल्लों बख्शिश कीती हुई पावन मुबारक गुरु फतेह नाल सांझ बनाइए। आखो जी वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। रोजाना ही इन्हां दीवानां दे विचों आप जी जो लड़ीवार गुरु ग्रंथ साहिब जी दी पावन बाणी दी कथा विचार चलदी है तिस नूं आप जी श्रवण करदे आ रहे हो। तिस लड़ी दे तहत भगत कबीर साहिब जी दी रसना तों उच्चारण कीता होया पावन शब्द जो राग गौड़ी भगतां दी बाणी दे सिरलेख हेठ कबीर जी दा तीजा शब्द है। गुरु ग्रंथ साहिब जी दे अंक नंबर 324 उपर सुभायमान है। आम तौर ते संसार विच विचरदिआं असीं वेखदे हां महसूस करदे हां कि जदों भी कोई मनुख बहुगिणती तों हट के एक पासे हो के तुरन दी कोशिश करे ते लोक उस दा वड्डी पद्धर दे उत्ते विरोध करदे ने। जिहड़ियां स्थापित धिरां ने जिहड़ियां स्टैबलिश ने लंबे समय तो चलदियां आ रहियां ने उहनां दी मनौत उहनां दी मन्नत इह हुंदी है कि जिन्नियां भी परंपरावां ने रस्मां ने धार्मिक चीज़ां ने इहनां दे उत्ते साडा बोलबाला होणा चाहीदा है। जे कोई भी शख्सियत कोई भी मनुख इस दे अगेंस्ट जाके अपनी गल रखने की कोशिश करता है तो उस नूं किसी ना

एक ओंकार सत नाम करता पुरख नरभाउ नरवार अकाल मूर्ता जूनी सपहं गुरप्रसाद राग जय जावंती महला नौमा राम सिमर तेरे काज है माया को संग त्याग प्रभु जो की शरण लाग जगत सुख मान मिथ्या झूठू सब साज है रहाउ सुपने जो तन पछान काहे पर करतमान दारू पी पीत जय सिंह बासदा को राज है नानक जन कहत मात बिनस जाहे तेरूंगा तू छन छन करंगे उकाल तैसी जात आज है जय जावंती महला नौमा राम पाज जन्म सरात है कहो कहा बार मार समझत नहि क्यों गवार बिनसत नहि लगे बार ओरे संग समगात है रहाउ सगल भरम डार दे गोविंद को नाम लेहि अंतम बार संग तीरे एक जात है बिखिया बिख ज्यों विसार प्रभु को जस ही ए धार

जग में राम नाम सो तो नहीं सुनियो कान, बिखियन से अत लुभान मत नाहन फेरी राव। मानस को जन्म लीन सिमरन नह निमख की न, दारा सुख पिहो दीन पघय परी बेरी। नानक जन कै पुकार सुपन ज्यों जग पसार, सिमरत नह क्यों मरार माया जा की चेरी। जय जावंती महला नौमा, बीत जह जन्म अकाज रे, निस दिन सुन कै प्राण समझत नरे अजान। काल तो पहुँचुआन कहाँ जाहे पाजरे रहाओ, अस्थिर जो मान्यो देह सो तो तेरो होए है खे। क्यों न हर को नाम लेहे मूर्ख निलाजरे, राम भगत ही आन छाड़ दे तै मां मन को मान। नानक जाने बखान जग में बिराजरे, एक ओंकार सतनाम करता पुरख। निर्भउ निर्वैर अकाल मूर्ता जूनी सहभंग गुरप्रसाद। सलोक सहस कृति महला पहला, पढ़ पुस्तको संध्या बादं। शिल पूज स बगल समादं मुख झूठ विभूखन सारंग। त्रिपाल तिहाल विचारंग गलमाला तिलक ललाटंग, दुय तूती वस्त्र कपाटंग। जो जानस ब्रह्मं कर्मं सब फोकट नेचे कर्मं, कहो नानक नेचो त्यावै बिन सतगुरु बाट न पावै। नै फलं तस्या जन्मस्या जावद ब्रह्म न बिंदते, सागरं संसार स्या गुरप्रसादि तरह के। करण कारण समरथ है कहो नानक विचार, कारण करति वासु है जिन कल रखी तार। योग शब्दं ज्ञान शब्दं वेद शब्दं तां ब्राह्मण है, खत्री शब्दं सूर शब्दं शूद्र शब्दं प्राकृत है। सर्व शब्दं तां एक शब्दं जे को जान सुपेयो, नानक तां को दास वै सोई निरंजन देव। एक कृष्ण तां सर्व देव देवा, सर्व देवा देव देवा तां आत्म है आत्म। श्री वासुदेव सिया जे कोई जान चपेवा, नानक तां को दास वै सोई निरंजन देवा। शलोक संस्कृति महला पंजवा, एक ओंकार सतनाम करता पुरख। निर्भउ निर्वैर अकाल मूर्ता जूनी सहभंग गुरप्रसाद। कतांच माता कतांच पिता कतांच बनता बनोद सुत है, कतांच प्रात मीत हित बंदब कतांच मो कुटुंबते। कतांच चपल मोहनी रूपं पेखंते त्यागं क्रोध, रहांत सांग भगवान सिमरन नानक लब्धं अच्युत तन है। तिरगंत मात पिता स्नेहं तिरग स्नेहं प्रात मांदव है, तिरग स्नेहं बनता बिलास सुत है। त्रिग स्नेह गृहार्थ कह साध संग स्ने, सत्यंग सुख्यांत बसंत नानक है। मिथ्यांत दिहंग खिणंत बलां बलंग, वरदंत जरुआ हितंत माया। हित्यांत आसा अथ्यंत भावनंग, गणंत सुवासा प्यान धर्मंग। पतंत महो पतंत मोहर कूप दुर्लभं दिहंग, ताता श्रंग नानक गोबिंद गोबिंद गोबिंद गोपाल कृपा। काच कोटं
रचांत तोयं लेपनं रक्त चरणमण नवांत द्वारं पीतरहंत्यं बाहे रूपं स्तंभन गोविंद नामं न सिमरांत अज्ञानी जानंतस्त्रं दुर्लभ्यं दुर्लभदे उदरांत सार शरण नानक हर हर हर हर हर हरे जपांत सुभांत तोहं अच्युत गुणहं पूर्णं बहलो कृपाला गंभीर ऊचै सर्वज्ञ पारा प्रत्याम प्रेम स्नाम चरणं अनाथ नाथी नानक शरणं मृगी पेखंत बदक प्रारेणं लख्याबधाय अहो जस रेखेन गोपालै नानक रोम न छिंदते बहु जतन करता बलवंत कारी सेवंत सूरा चतुर दिशै बेखम थान मसंतु चहै ना सिमरंत मरण कदा चहै होवंत वाग्या भगवान पुरखै नानक कीर्ति सास करखते शब्दं रतं हितं माम्या कीर्तं कली कर्म कृतुआ मटांत तत्रंगत परमोहं भगवान रमनं सर्वत्र ध्यानं दृष्टांत तुहं अमोग दर्शनं बसंत साधु रसना हर हर हर हरि नानक प्रिं जाप जपना कटांत रूपं कटांत दीपं कटांत रव सस्यर नखत्र गगनं कटांत मसदा गर्त्रय सखंडन कटांत ललना सुत प्रात हितं कटांत कनक मानक माया सब रूपं नह कटांत केवल गोपाल अच्युत अस्त्रं नानक साध जाना नह बलंब धर्मं बलंबं पापं दृढ़ंत नामं त्यजंत लोभं शरण संतं किलविकनाशं प्राप्तं धर्म लख्यण नानक जय सुप्रसन्न महादुभय मृत मुहं अल्प बुद्धिं रचंत बंता पनोत्साहं जोबन वह कर्म कनक कुंडल है बचित्र मंदिर शोभंत वस्त्रा इत्यंत माया वित्यां व्याप्तं हे अच्युत शरण संत नानक पू भगवान है नमः जन्मं ता मरणं हरखं ता सोघं भोगं ता रोगं ऊचं ता नीचं नाना सो मूचं निराजं ता मानं अवमानं ता हीनं परवृत मार्गं वृतंत विनाशनं गोविंद भजन साध संगेन अस्त्रं नानक भगवंत भजनासनं कृपांत हरियं मंत मत तत् ज्ञानं बक्षिद्या बुदा कुशल थानं संत्यारख्यं त्याग मानं शीतलंत हृदयं दृढ़ंत संत ज्ञानं रहांत जन्मं हर दर्शलीना भजंत नानक शब्द बीना कहंत बिदा गणंत गुणिया सुनंत माला बो विद प्रकारा दृढ़ंत सुबिद्या हर हर कृपाला नाम दान जाचंत नानक देन हार गुरु गोपाला न चिंता मात पित प्रात है न चिंता कछ लोक कह न चिंता बनता सुत मीत परवृत माया संबंधन है दयाल एक भगवान पुरख है नानकू सर्ब जी प्रतपालक है।

चित्तं अहं बुद्ध्यं परम माया मलनं विकारं फिरंत जोन अनेक जिठरागन नह सिमरंत मलीन बुद्ध्यं हे गोविंद करत मया नानक पतति उदाहरण साध संग मै ग्रंथ गर पतत पतालं जलंत दे दीप व्यवस्त्रय बहंत अगहं तुहं तरगं दुखंत ग्रह चिंता जन्मता मरण है अनक साधनं न सिद्ध्यते नानक स्तंभनं अस्तंभ्यं अस्तंभ्यं शब्द साध सब्जन है घोर दुखं अनखत्यं जन्म दरिंद्रं महाविखाद्यं मटांत सगलो सिमरंत हरनाम नानक जैसी पाव काष्ट पस्म क्रूत अंधकार सिमरत प्रकाशं गुण रमंत अगखंडन है मृद बसंत पै पीत दूत है कर्म करत महा निर्मल है जन्म मरण रहंत श्रोता सुख समूह अमोघ दर्जन है अमोघ दर्शन है शरण जोगं संत प्री नानक सो भगवान खेमं क्रोत

खंड नयन भगतं भगत दान राम नाम गुण कीर्तन पार ब्रह्म पुरख दाता रे नान गुर सेवा कन लभ्यते अदरंग तरंग तारण है निरतन तन नाम नर्म है अनाथ नाथ गोविंद है बाल बालहीन बल की शुभ है सर्वभूत दयाल अच्युत दीन बांधव है दमोदर है सर्वज्ञा पूर्ण पुरख भगवान भगत वशल करुणा है घट घट मसंत वासुदेव है पार ब्रह्म परमेश्वर है जचंत नानक कृपाल प्रसादं नह विश्रांत नारायण है नह समर्थं नह सेवकं न प्रीत परम प्रखोत्मं तब प्रसाद सिमरते नामं नानक कृपाल हर हर गुरहं भरण पोखण करंत जिया विश्वास साधन देवंत दानं सृजंत रतन जन्म चतुर चीतन है वृतांत सुख आनंद प्रसाद सिमरंत नानक हर हर हरे अनंत रचना निर्मोहते दानं प्रापूर्वेण पुचन्ते महीपते वपरीत बुद्धिं मार्त लोक है नानक चिरकाल दुख भोगते वृथा अनुग्रहं भो गोविंद जस सिमरण हृदंतर है अरोघं महारोघं विस्मरते विस्मृते कुरुणाम रमणं केवलं कीर्तनं सुधर्मं दे धारण है अमृत नाम नारायण नानक पीबतं संतन तृप्ते सहनशील सत्यं सम मित्र सिया दुर्जन है नानक भोजन वनक प्रकारेण निंदक आबद होए उपदिष्टते तिरस्कार नह पवंत मान भोगन है शोभाहीन नह पवंत नह पुहंत संसार दुखन है गोबिंद नाम जपंथ जपंत मिल साध संग नानक से प्राणी सुख बासन है सैना साध समूह सूर अजत सनहंग तन निर्मृत है अवध है गुण गोबिंद रमनंग योट गुर शब्द कर चरणम है अरूढ़ते अश्वरथ नंग है बुजंते प्रभ मार्ग है विचरते नृपयंग शत्रंग सैनाम ध्यानते गोपाल कीर्तन है जितते विश्व संसार है नानक वश्यं क्रोत पंच तस्कर है मृग तृष्णा गंधर्व नगरंग धर्म छाया रच दुर्मित है तत है कुटंब है मोह मिथ्या सिमरंत नानक राम राम नाम है नच विद्या निधान निगमं नच गुणं नाम कीर्तन है नच राग रतन कंठं न चंचल चतुरी चातुर है भाग उद्यम लब्धं माया नानक साध संखल खंडन है कंठ नमणी राम राम माला हस्त ऊच प्रेम धारणी जी भाणजो उत्तम श्लोक उदरणंग नैन नंदनी गुरमंत्र हीन सिया हीन सुजो प्राणी तिरगंत जन्म दृष्टन है गुरमंत्र हीन सुजो प्राणी तिरगंत जन्म पृष्ठन है कुकर है शूकर है गर्दम है कक है सर्पन है तुलखल है चरुणार बिंद भजनंग हृदयंग ना तारण है कीर्तनंग साध संगेण नानक नह दृष्टांत जमदूतन है नच दुर्लभ्यंग धनंग रूपंग नच दुर्लभ्यंग स्वर्ग राजन है नच दुर्लभ्यंग भोजनंग बीजनंग नच दुर्लभ्यंग सब संभर है नच दुर्लभ्यंग सुत मित्र है भारात बांधव नच दुर्लभ्यंग बनता बिलास है
नच दुर्लभ्यंग विद्या प्रवीणंग नच दुर्लभ्यंग चतुर चंचल दुर्लभ्यंग एक भगवान नाम है नानक लुभदंग साध संकृपा प्रभं जातकत है तथ है दृष्टंग सर्वर्ग मर्त प्या लोक है सर्वतर रमनंग गोविंद है नानक लेप शीप न लिपते बिखिया पुहंत अमरंत दृष्टा सख सब जन दुखंग पुहंत सुखंग पह पीतंग तृपह थान बिहून विश्राम नाम नानक कृपाल हर हर गुर है सर्वशील ममंग शीलंग सर्व पावन मम पावन है सर्व कर्तव ममंग कर्ता नानक लेप शीप न लिप्यते ना शीतलंग चंद्र देव न शीतलंग भावन चंदन है न शीतलंग शीतुरतेण नानक शीतलंग साध सब जन है मंत्रंग राम राम नामंग ध्यानंग सर्वत्र पूर्ण है ज्ञान साम दुख सुखं जुगत निर्मल निर्वैरण है दयालं सर्वत्र जिया पंच दोख पविवरचित है भोजनं गोपाल कीर्तनं अल्प माया जल कमल रहत है उपदेशं सम्मित्र सत्र है भगवंत भगत पावनी पर निंदा नह स्रोत सर्वणं आप त्याग सगल रेणुक है खट लखण पूर्णं पुरख है नानक नाम साध सब जन है अजा पोघंत कदं मूलं बेसंते समीप केर है ततर गति संसार है नानक सोग हरखं व्यापति शलं शिंद्रं कोट विघ्नं अपराधं किलविखमालं मलं परं परं मुहं मान अपमानं मदं माया व्याप्तं मित्र जन्म परमातन नरक है अनको पावना सिद्धते निर्मलं साध संग है जपंत नानक गोपाल नामं रोमांत गुण गोविंद नित प्रत है तरन सरन स्वामी रमन शील परमेश्वर है करण कारण समर्थ है दान देत प्रपूर्ण है नरास आस करन सगल अर्थ आल है गुण धान सिमरंत नानक सगल जचंत जाग चिकै दुर्गम स्थान सुगम महादुख सर्व सूखण है दुर्वचन भेद भरमं साकत पिसनंता सुरजन है अस्थं सोग हरखं पै खीणंता निरपवै पै उटवंत्या अटवंत महानगर बासं धर्म लखण प्रभ माया म्यांसा संग्राम नाम रमणं शरण नानक हर हर दयाल चरणं हे अचैत सूर संग्राम अतमल नाम बहु मर्दन है गण गंधर्व देव मनुखिया पशु पंखी बिमून है हर करण हारं नमस्कारं शरण नानक जगदीश्वर है हे कामं नरक विश्रामं बहुजूनी प्रभावण है चित हरनं त्रै लोक गम्यं जप तपु शील विदारण है अल्प सुख अवैत चंचल ऊच नीच समावन है तब भय विमुचित साध संगम ऊट नानक नारायण है हे काल मूल क्रोधं कदांच करुणाम है करुणा न उपर्जते बिख्यांत जीवं वश्यं क्रोत निरदंतरं क्रोर जथा मृकट है अनक शासन तड़ंत जमदूत तब संगे अधम नर है
दीन दुख भंजन दयाल प्रभ नानक सर्व जी रखिया क्रोध हे लोबा लंपट संग सिरोमहर सरोमर है अनक लहरी कलोलते तवंत जिया बहु प्रकार अनक भांत बहु डोलते नच मित्रंग नच इष्टंग नच बांधव नच मात पिता तब लज्जिया अकरनं क्रोत अखादं खादं असाजिया साज समझिया त्राहे त्राहे सन स्वामी विज्ञापत नानक हर नर हरय हे जन्म मरण मूलं हंकार पापात्मा मृतं तजंत सत्रंग दृढ़ंत अनक माया बिकट असाध रोगण है वैधं पार ब्रह्म परमेश्वर है आराध नानक हर हर हरे हे प्राणनाथ गोविंदा कृपा निधान जगद गुरु ही संसार ताप हरुणा रहै करुणा में सब दुख हरो हे शरण जोग दयाल है दीना नाथ मया करो शरीर स्वस्थ खीण समय सिमरंत नानक राम दामोदर माधवै चरण कमल सरनं रमणं गोपाल कीर्तन है साध संगेन तरनं नानक महासागर पै दूत्र है सिर मस्तक रखिया पार ब्रह्म हस्तकाया रखिया परमी सुमर है आत्म रखिया गोपाल स्वामी धन चरण रखिया जगवदी सुमर है सर्व रखिया गुरदयालै भै दुख विनाशन है भगत वछलिया नाथ नाथी शरण नानक पुरख अचुत है जीन कला धारियो आकाश वै संतरंग काष्ट बेष्टंग जीन कला ससूर नखत्रंग ज्योतिया संसारंग सशरीर धारण जी

सिमरंत गोबिंद सरनान कुहार हर हरि तिलकहीन जथा विप्रा अमरहीन जथा राजन है आवदहीन जथा सूरा नानक धर्महीन तथा वै समन है ना सखं ना चकन ना गदा ना श्यामं आश्चर्य रूपं रहंत जन्मं नीत नीत कथंत वेद वेदा ऊच मूच उपार गोबिंद बसंत साध निरिध्यं अचुत बुजंत नानक बड़भागी है उद्यान बसन संसारं संबंधी सवान सियाल खर है बिखम सुथान मान मोहो मंद्रं महासाद पंच तस्कर है हीत मोह पै परम परमण अहं फास तीक्षण कठिन है पावक तो असाद कोरंग आगम तीर ना लंगन है भज साध संग गोपाल नानक हर चरण शरण उदरण कृपा कृपा करंत गोबिंद गोपाल सगल रोग खंडन है साध संगेन गुण रमत नानक शरण पूर्ण परमेश्वर है श्याम लंग मधुर मनुख्यं हृदयं भूम वैरण है नवांतो होवंत मिथ्या चेतन संत सबजन है अचेत मूड़ा न जनांत कटांतु सासा नित प्रति छिजांत महा सुंदरी काया काल कन्या ग्रास्ती रचांत पुरख है कुटंब लीला तुवासा बिख्या बनोद परमांत परमांत बहु जन्म हारियु शरणान करुणा मै हे जेबे हे रसगे मधुर प्रीप्त हंग सत हतं परम बादं अवर्त एथ सुध अशरण है गोबिंद दामोदर माधवे गुरवंत नारी माधोन मंतं बलवंत बलात कारण है चरण कमल न पुजंत तिरन समान तिरघंत तिरग जन्म न हे पपील का ग्रष्टि गोबिंद सिमरन ते तने नानक अनक बार नमो नम है तृणंग तामेरंग सहकंग हरियंग बूढ़ंग तरियंग ऊनंग भरियंग अंधकार कोट सूर उजारंग बिनवंत नानक हर गुरदुर दियारंग ब्राह्मण संग उदरण ब्रह्म कर्म जे पूर्ण आत्म रतिं संसार घतं ते नर नानक नैफल पर दर्द हिरणं बहु विघ्न करणं उच्चरणं सर्वजी कहै लौ लई तृष्णा यत पत मन माए कर्म करतु सी सूकर है मति समीव अचरणं उदरणं तह दूत्र है अनेक पातं हरणं नानक सार संगम ना संसहै महला पंजवा गाथा एक ओंकार सतगुर प्रसाद करपूर पहुंप सुगंधा परस मनुखं देहं मलीनं मजा रुद्रं दुर्गंधा नानक आंधु गर्भेण अज्ञानो परमाणु प्रजंतु आकाशै दीप लोस खंडन है गशेण नैन परेण नानक बिना साधु ना सिद्धियते जानो सत होवंतो मरणो दृष्टेण मिथ्या कीर्त साध चलंथो पणंत नानक साध संगेण माया चित परमेण इष्ट मृत्य एक माधवै लब्धं साध संगेण नानको सुख स्थान गोपाल भजनंग मैलागर संगेण निमंग निम बिरख से चंदन है निकट बसंतो बासो नानको बुद्ध न बहुते

मर्दन है। हतं पंच संत्रेण नानकुंवर माणे प्रहाराय वचन सार सुख पंथा लहंथा बड करमण है। हंथा जन्म रणेन रमणंग नानकुंवर कीर्तन है। पत्र प्रजेण झड़ियंग ना जड़ियंग पेड़ संपता नाम बिहून बिखमता नानक मोहंत जोन बासुरो रैणी भावनी सार संगेन लभतंग बड भागण है। हर नाम गुण रमन नानक संसार सागर नाम व्यापन है। गाथा गूढ़ अपारंग समझन बिरला जान है। संसार काम तजन नानको गोबिंद रमन सार संगम है। समंतर साध बचना कूट दोख मिनासन है। हर चरण कमल ध्यान नानक कुल समूह उदाहरण है। सुंदर मंदिर सैन है जेण मध्यम हर कीर्तन है। मुक्त रमन गोबिंद है नानक लबदिंग बड भागण है। हर लबदो मित्र सुमितो विधारण कदे ना चित्तो जाका स्थूल तोल अमितो सोई नानक सखा जी संकितो अपजसंग मिटंत सत परतर है। सिमरन त्यार दे गुण मंत्रण है। प्रीतम भगवान चौत नानक संसार सागर तारण है। मरणंग विसरणंग गोबिंद है जीवनंग हर नाम त्यावण है। लभ्यण साध संगेण नानक हर पूर्व लखण है। दसन बिहून भुएंगंग मंत्रं गारुड़ी निवारं ब्याद उपाड़ंत सान संतंग नानक लब्ध करुण मनाय। जत कथ रमणंग शरणंग सर्वत्र जीण है। तथ लवणंग प्रेम नानक प्रसादं गुरदर्शन है। चुनार बिंद मन विद्यंग सिद्ध्यंग सर्व कुशलन है। गाथा गवंत नानक भयंग परा पूर्वण है। सब बचन रमणंग गाणंत साध संगेन उदरण है। संसार सागरंग नानक पुनरप जन्म न लुभते। वेद पुराण शास्त्र विचारंग एकंकार नाम उतारंग कुल समूह सगल उदाहरंग बड़भागी नानको तारंग। सिमरंग गोबिंद नामंग उदरणंग कुल समूह है। लब्ध्यंग सार संघेण नानक बड़भागी पैठंत दर्शन है। सर्व दोख प्रत्यागी सर्व धर्म दृष्टन लभतेण साध संघेण नानक मस्तक लिखण। हो है होवंतो हरण भरण संपूर्ण साधु सतम जानो नानक प्रीत करण। सुखेण बैन रतनंग रचन कुसम रंगणंग रोग सोग वियोगंग नानकु सुख न सुपन है। फुन है महल्ला पंजवा एक ओंकार सतगुर प्रसाद। हाथ कलम अगम मस्तक लिखावती उर्जरिउ सब संग रू अनूप रूपावती। उस्तद कहण न जाए मुखु तुम्हारिया मोहि देख दर्श नानक बलिहारिया। संत सभा में बैस के कीर्त मैं कहा अर्पी सब सिंगार एह जियो सब निवा। आस प्यासी सेज सो कंत विशाई है। हर हां मस्तक होवे भाग ता साजन पाई है। सखी का जलहार तंबोल सबै की साजिया। सोल है किए सिंगार के अंजन पाजिया।

सोई जाता न बताए, सखी प्रयो पाई है। नैण ना देख है साध, से नैण बहालिया। कारण ना सुन ही नाद, कर्ण मूंद कालिया। रसना जपै ना नाम, तिल तिल कर कटिया। हर हां जब बिसरै गोबिंद राय, दिनों दिन घटिया। पंकज फाथे पंक, महामद गुफिया। अंग संग उरजाय, बिसरते सुंफिया। है कोई ऐसा मीत, जे तुरै बिखम गांठ। नानक एक श्री धरनाथ, जे टूटै ले सांठ। धावो दसा अनेख, प्रेम प्रभ कारण। पंच सता वह दूत, कवन विद मारण। तीखण बाण चलाए, नाम प्रभ ध्याई। हर हां महाबिखादी घात, पूरन गुर पाई है। सतगुर कीनी दात, मूल नान खुटाई। खाव हो पुंचो सब, गुरमुख छुटाई।

सठ का शार तन फिर तो गर्भ गुबार मरण नह जानी हर हां हर चंद औली पेख काहे सच मानी जिसकी पूजे औद तिसे कौन रखई वेद का अनक उपाव कहां लो पाखई एक उचित गवार काज तेरे आवई हर हां बिन नावे तन शार बिरथा सब जावई औ खुद नामे अपार अमोलक पीजई मिल मिल खावे संत सगल को दीजई जिसे प्राप्त हुए तिसे ही पावन हर हां हों बलहारी तेना जे हर रंग ला रावणी वैदा संदा संग इकट्ठा होया औखद आई रास विच आप खलोया जो जो ओना कर्म सो कर्म होए पसरिया हर हां दुख रोग सब पाप तन ते खिसरिया चौ बुले महला पंजमा एक ओंकार सतगुर प्रसाद समन जो इस प्रेम की दम कहो ती साट रामन होते सो रंग नह जिन सिर दीने काट प्रीत प्रेम तन खच रहया बीच नाराई होत चरण कमल मन बेदियो बूजन सुरत संजोग सागर मीर उदयान बन नव खंड बुसदा भरम मूसन प्रेम परम कै गनो एक कर कर्म मूसन मस कर प्रेम की रही सो अंबर छाए बीदे बांदे कमल मह भावर रहे लपटाए जाप तप संजम हरख सुख मान महत अर गर्भ मूसन निमखक प्रेम पर वार वार द्यों सर्ब मूसन मर्म ना जानई मरत हिरत संसार प्रेम परम न बिदियो उर्जियो मिथ व्योहार कहब दब सुवाओ है चरण कहब दब जब जारी है बिशरत प्रेम बेहाल मूसन तब ही मूसी है
ਬਿਸਰਤ ਪੁਰਖ ਦਿਆਲ ਜਾਂ ਕਉ ਪ੍ਰੇਮ ਸੁਆਉ ਹੈ ਚਰਨ ਚਿਤਵ ਮਨ ਮਾਹੀ ਨਾਨਕ ਬਿਰਹੀ ਬ੍ਰਹਮ ਕੀ ਆਨ ਨ ਕਤਹੂ ਜਾਹੀ ਲਖ ਘਾਂਟੀ ਉਚੋ ਘਨੋ ਚੰਚਲ ਚੀਤ ਬਿਹਾਲ ਨੀਚ ਕੀਚ ਨਿਮਰਤ ਘਨੀ ਕਰਨੀ ਕਮਲ ਜਮਾਲ ਕਮਲ ਨੈਣ ਅੰਜਨ ਸਿਆਮ ਚੰਦਰ ਬਦਨ ਚਿਤ ਸਾਚਾਰ ਮੂਸਨ ਮਗਨ ਮਰਮ ਸਿਓ ਖੰਡ ਖੰਡ ਕਰ ਹਾਰ ਮਗਨ ਭਇਓ ਪ੍ਰਿਆ ਪ੍ਰੇਮ ਸਿਓ ਸੂਦ ਨ ਸਿਮਰਤ ਅੰਗ ਪ੍ਰਗਟ ਭਇਓ ਸਭ ਲੋ ਮਹਿ ਨਾਨਕ ਅਦਮ ਪਤੰਗ। ਸਲੋਕ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀਓ ਕੇ ਇੱਕ ਓਅੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦਿ।

सुख बिसराम। कबीर मेरी जात को सबको हसने हार, बलहारी इस जात को जेह जपियो सिरजनहार। कबीर डगमग क्या कर है, कहां डुला वह जियो, सर्व सुख को नायको, राम नाम रस पियो। कबीर कंचन के कुंडल बने, ऊपर लाल जड़ाओ, दिस है दादे कान ज्यों,

जीवत मृतक होए, निरपय होए कै गुण रवै, जत पेखो तत सोए, कबीर जा दिन हुआ मुआ, पाछे पया आनंद, मोहे मिलियो प्रभ आपना, संगी भजह गोबिंद, कबीर सब ते हम बुरे, हम तज भलो सब कोए, जिन ऐसा कर बूझया, मीत हमारा सोए, कबीर आई मुझ है पह, अनक करे कर पीस, हम राखे गुरे आपने, उन कीनो आदेश, कबीर सोई मारिया, जह मुवे सुख होए, पलो पलो सब को कह, बुरो न मन कोए, कबीर राती हूँ वह कारिया, कारे उबह जंत, ले फाहे उठ तावते, से जान मारे भगवंत, कबीर चंदन का बिरवा भला, बेड़ो ढाक पलास, ओए पी चंदन होए रहे, बसे जो चंदन पास, कबीर बांस बढ़ाई बूढ़िया, यो मत डूबह कोए, चंदन कै निगटै बसै, बास सुगंध ना होए, कबीर दीन गवाया दुनी स्यों, दुनी ना चाली साथ, पाई कुहाड़ा मारिया, गाफल अपने हाथ, कबीर जह जह हो फिरयो, कौ तक ठाओ ठाए, एक राम स्नेही बाहरा, उजर मेरा भाए, कबीर संतन की चुंगिया भली, पाठ कसती गाओ, आग लगो तह तौल हर, जेह नाही हर को नाओ, कबीर संत मुए क्या रोइया, जो अपने ग्रह जाए, रोवह साकुत बापुरे, ज्यो हाट हाट बेकाए, कबीर साकत ऐसा है, जैसी लसन की खान, कोने बैठे खाई है, प्रगट हुए निदान, कबीर माया डोलनी, पवन चकोलन हार, संत माखन खाया,
छाछ पिए संसार, कबीर माया डोलनी, पवन वह हिव तार, जिन बुलोया तिन खाया, अवर बलोवन हार। कबीर माया चोरटी, मुस मुस लावे हाट, एक कबीरा नाम उसै, जिन कीनी बारह बाट। कबीर सुख ना एह जोग, करहै जो बहुते मीत, जो चित राखे एक स्यों, ते सुख पावह नीत। कबीर जिस मरने ते जाग डराय, मेरे मन आनंद, मरने ही ते पाई पूरन परमानंद। राम पदार्थ पाए कै, कबीरा गांठ न खोल, नहीं पटन नहीं पार खू, नहीं गाहक नहीं मोल। कबीर ता स्यों प्रीत कर, जाको ठाकुर राम, पंडित राजे भूपति, आवहै कौने काम। कबीर प्रीत एक स्यों किए, आन दुबदा जाए, पावे लंबे केस कर, पावे कर मुंडाए। कबीर जग काजल की कोठरी, अंध परे तिस माहे, हों बलहारी तिन को, पैसो जो नीक सजाही। कबीर इहो तन जाएगा, सक होता लिहो बहोर, नांगे पाव होते गए, जिनके लाख करोर। कबीर इहो तन जाएगा, कवने मार्ग लाए, कै संगत कर सादकी, कै हर के गुण गाए। कबीर मरता मरता जग मुआ, मर भी ना जानिया कोए, ऐसे मरने जो मरे, बोहर ना मरना होए। कबीर मानस जन्म दलंब है, होए ना बारे बार, ज्यों बन फल पाके भोए गिरहै, बोहर ना लाग है डारे। कबीरा तू ही कबीर तू,

ज्यों पहले तजह शरीर कबीर चंख ना चंखिया तुमरो कहो ना होए कर्म करीम जो कर रहे मेट ना सके कोए। कबीर कसौटी राम की झूठा टिके ना कोई राम कसौटी सुसह जो मर जीवा होए। कबीर उजल पहरे कापरे पान सुपारी खाहे एकस हर के नाम बिन बादे जमपुर जाहे। कबीर बेड़ा जर्जरा फूटे शेक हजार हरवे हरवे तिर गए डूबे जिन सिर पार। कबीर हांड जरे ज्यों लाकरी केस जरे ज्यों घास एहो जग जरता देख कै

फिर पाछी पछताओगे, प्राण जाहेंगे छूट। कबीर, ऐसा कोई जन्मयो, कबीर ऐसा कोई ना जन्मयो, अपने कर लावे आग, पांचो लड़का जार कै रहे राम लिव लाग। को है लड़का बेचई, लड़की बेचै कोई, सांझा करे कबीर स्यों, हर संग बनज करे। कबीर इह चेतावनी, मत सहसा रह जाए, पाछै भोग जो भोगवै, तिनको गुड़लै खाही। कबीर मैं जान्यो पढ़बो भलो, पढ़बे स्यों भल जोग, भगत ना छाड़ो राम की, पावे निंदो लोग। कबीर लोग के निंदे बापुड़ा,

कबीर परदेसी कह घागरी चहो दिस लागी आग खिंथा जल कोयला पई तागे आंच न लाग कबीर खिंथा जल कोयला पई खापर फूट मफूट जोगी बपड़ा खेलो आसन रही बेपूत कबीर थोरे जल माछली चीवर मिलो जाल एह टोकन ना छूट सह फिर कर समुंद समाल कबीर समुंद ना छोड़िया जो अंत खार होए पोखर पोखर ढूंढते पलो न कह कोए कबीर निगुसाए बह गए थांगी नाही कोए दीन गरीबी अपनी करते हुए सो होए कबीर बैसनो की कुकर भली साकत की बुरी माए ओह नित सुने हर नाम जस ओह पाप बसाहन जाए कबीर हर ना दुबला एहो हरियारा ताल लाख अहेरी एक जियो केता बंचो काल कबीर गंगा तीर जो घर कर है पीव है निर्मल नीरा बिन हर भगत न मुक्त होए इयों कह रमे कबीर कबीर मन निर्मल भया जैसा गंगा नीर पाछे लागो हर फिरा कहत कबीर कबीर कबीर हरदी पियरी चूना उजल पाए राम स्नेही तो मिले दोनों वर्ण गवाए कबीर हरदी पीर तन

0: जे जात बर्ण कुल जाए, कबीर मुक्त द्वारा संकुरा, राई दसवें पाए, मन तो मैगल होए रहो, निकसो क्यों कह जाए। कबीर ऐसा सतगुर जी मिले, तुठा करे पसाओ, मुक्त द्वारा मोकला, सहजे आवो जाओ। कबीर ना मुहे शान ना छापरी, ना मुहे कर नहीं गाओ, मत हर पूछे कौन है, मेरी जात ना नाओ।
1: कबीर मोहे मरने का चाओ है, मरो ता हर के द्वार, मत हर पूछ कौन है, परा हमारे बार। कबीर ना हम किया ना करेंगे, ना कर सके शरीर, क्या जानो किस हर किया, पयो कबीर कबीर। कबीर सुपने हूं बरड़ाए कै, जह मुख निकसे राम, ताके पग की पा नहीं, मेरे तन को चाम। कबीर माटी के हम पूतरे, मानस राख्यो नाओ, चार दिवस के पाहुने, बड़ बड़ रूद है ठाओ। कबीर मेहंदी कर कालिया, आप पिसाए पिसाए, तै सह बात न पूछिए, कब हो न लाई पाए। कबीर जह दर आवत जाते हो, हटके नाही कोए, सो दर कैसे छोड़िए, जो दर ऐसा होए। कबीर डूबा था पे उबरियो, गुण की लहर चबक, जब देखियो बेड़ा जर जरा, तब उतर परयो हो फर्क। कबीर पापी भगत न पावई, हर पूजा ना सुहाए, माखी चंदन पर हरे, जह बिगंध तह जाए। कबीर बेद मुआ रोगी मुआ, मुआ सब संसार, एक कबीरा ना मुआ, जह नाही रोवनहार। कबीर राम ना त्यायो, मोटी लागी खोर, काया हांडी काट की, ना ओ चर है बहोर। कबीर ऐसी होए परी, मन को पावत की ना, मरने ते क्या डरपना, जब हाथ सिधौरा लीन। कबीर रस को गांडो चूसी है, गुन को मरिए रोए, अब गुनिया रे मानस है, पलो ना कह है कोए। कबीर गागर जल परी, आज काल जह फूट, गुर जो ना चेते है अपनो, अद मांजलि जहेंगे लूट। कबीर कुकर राम को, मुतिया मेरो नाओ, गले हमारे जेवरी, जह खिचे तह जाओ। कबीर जपनी काठ की, क्या दिख लाभ है लोए, हृदय राम न चेतही ए जपनी क्या होए। कबीर बिरहो पयंगम मन बसे मंत न माने कोए। राम बियोगी ना जिए जिए ता बौरा होए। कबीर पारस चंदन तिन्ह एक सुगंध तह मिलते ऊतम पैलो काठ निर्गंध। कबीर जम काठे गा बुरा है ओ नहीं सहया जाए। एक जो साधु मोहे मिलियो तिन लिया अंचल लाए। कबीर ब्याद कहे हो ही पला दारू मेरे वस। ए तो बस्त गोपाल की जब पावे लेखस। कबीर नौबत आपनी दिन दस लिहो बजाए। नदी नाभ संजोग ज्यो बोहर न मिल है आए। कबीर सात समंद है मस करो कलम करो बन राए। बसदा कागद जो करो हर जस लिखन न जाए। कबीर जात जुलाहा क्या करे हृदय बसे गोपाल। कबीर रमिया कंठ मिल चूक है सर्ब जंजाल। कबीर ऐसा को नहीं मंदर दे जराए। पांचो लरके मार के रहे राम लियो लाए। कबीर ऐसा को नहीं ए तन देवे फूक। अंधा लोग न जानई रहो कबीरा कूक। कबीर सती पुकारे चह चढ़ी सुनो बीर मसान। लोक सबाया चल गयो हम तुम काम निदान। कबीर मन पंखी पयो उड़ उड़ दै दिस जाए। जो जैसी संगत मिले सो तैसो फल खाए। कबीर जाको खोजते पायो सोई ठौर। सोई फिर कह तू पया जाको कहता और। कबीर मारी मरुक संग की केले निकट जो बेर। ओ चूले ओ चीरिए साकत संग ना हेर। कबीर भार पराई सिर चरे चलियो चाहे बाट। अपने भार है ना डरे आगे आओ कट काट। कबीर बन की दादी ला करी ठाडी करे पुकार। मत बस परो लोहार कै जारे दूजी बार। कबीर एक मरंत है दोए मुए दोए मरंत है चार। चार मरंत है छे मुए चार पुरख दोए नार। कबीर देख देख जग ढूंढिया कहू न पाया ठार। जिन हर का नाम न चेतियो कहां भलाने और। कबीर संगत करिए साध की अंत करे निर्वाह। साकत संग न कीजिए जाते होए निबाह बिनाह। कबीर जग मह चेत्यो जान कै जग मह रहो समाए। जिन हर कह नाम न चेत्यो बाद है जन्मे आए। कबीर आसा करिए राम की अवरे आस निरास। नरक परहते मानई जो हर नाम उदास। कबीर सिख साखा बहुते किए केसो कियो न मीत। ਚਾਲੇ ਤੇ ਹਰ ਮਿਲਨ ਕੋ ਬੀਚੇ ਅਟਕੇ ਉਚੀਤ। ਕਬੀਰ ਕਾਰਨ ਬਪਰਾ ਕਿਆ ਕਰੇ ਜੋ ਰਾਮ ਨਾ ਕਰੇ ਸਹਾਏ। ਜੈ ਜੈ ਡਾਲੀ ਭਗਤ ਰੋ ਸੋਈ ਮੁਰ ਮੁਰ ਜਾਏ। ਕਬੀਰ ਅਵਰੇ ਕੋ ਉਪਦੇਸ਼ ਤੇ ਮੁਖ ਮੈਂ ਪਰ ਹੈ ਰੇਤ। ਰਾਸ ਬਿਰਾਨੀ ਰੱਖ ਤੇ ਖਾਇਆ ਕਰਕਾ ਖੇਤ। ਕਬੀਰ ਸਾਧੂ ਕੀ ਸੰਗਤ ਰਹੋ ਜੋ ਕੀ ਭੂਸੀ ਖਾਓ। ਹੋ ਨਹਾਰ ਸੋ ਹੋਏ ਹੈ ਸਾਕਤ ਸੰਗ ਨਾ ਜਾਓ। ਕਬੀਰ ਸੰਗਤ ਸਾਧਕੀ ਦਿਨ ਦਿਨ ਦੂਨਾ ਹੇਤ। ਸਾਕਤ ਕਾਰੀ ਕਾਂਬਰੀ ਧੋਏ ਹੋਏ ਨਾ ਸੇਤ। ਕਬੀਰ ਮਨ ਮੁੰਡਿਆ ਨਹੀਂ ਕੇਸ ਮੁੰਡਾਏ ਕਾਏ। ਜੋ ਕਛ ਕੀਆ ਸੋ ਮਨ ਕੀਆ ਮੁੰਡਾ ਮੂੰਡ ਅਜਾਏ। ਕਬੀਰ ਰਾਮ ਨਾ ਛੋਡੀਐ ਤਨ ਧਨ ਜਾਏ ਤਾਂ ਜਾਓ। ਚਰਨ ਕਮਲ ਚਿਤ ਬੇਦਿਆ ਰਾਮ ਹੈ ਨਾਮ ਸਮਾਓ। ਕਬੀਰ ਜੋ ਹਮ ਜੰਤ ਬਜਾਵਤੇ ਟੁੱਟ ਗਈ ਸਭ ਤਾਰ। ਜੰਤ ਬੇਚਾਰਾ ਕਿਆ ਕਰੈ ਚਲੈ ਬਜਾਵਨ ਹਾਰ। ਕਬੀਰ ਮਾਏ ਮੁੰਡੋ ਤਹਿ ਗੁਰੂ ਕੀ ਜਾਤੇ ਭਰਮ ਨਾ ਜਾਏ।

प्रगट पै निदान सब जब पूछे धर्म राय। कबीर हर का सिमरन छाड़ कै पाल्यो।

मन चार। कबीर चतराई अत कनी, हर जप हृदय माहै। सूरी ऊपर खेलना, गिरे त ठहर नाहि। कबीर सोई मुख तन है, जा मुख कहिए राम। देही किसकी बापरी, पवित्र होए गोग्राम। कबीर सोई कुल पली, जा कुल हर को दास। जह कुल दास न उपजै, सो कुल ढाक पलास। कबीर है गै बाहन सगन, कन लाख तजा पहराए। या सुख ते पिखा पली, जो हर सिमरत दिन जाहे। कबीर सब जग हो फिरयो, मादल कंद चढ़ाए। कोई काहू को नहीं, सब देखी ठोक बजाए। मार्ग मोती बीथरे, अंधा निकस्यो आए। जोत बिना जगदीश की, जगत उलंगे जाए। बूढ़ा बंस कबीर का, उपजो पूत कमाल। हर का सिमरन छाड़ कै, घर ले आया माल। कबीर साधु को मिलने जाइए, साथ न लीजे कोए। पाशो पाओ न दीजिए, आगे होए सो होए। कबीर जग बाद्यो जह जेवरी, तह मत बंद हो कबीर। जह है आटा लोन ज्यो, सोन समान शरीर। कबीर हंस उड्यो तन गाड्यो, सो जाई से नाह। अजहो जीव न छोड़ई, रंकाई नैनाह। कबीर नैन निहारो तुझको, सरवन सुनो तो नाओ। बैन उचरो तो नाम जी, चरण कमल रिद ठाओ। कबीर सुर्ग नरक ते मैं रहयो, सतगुर के प्रसाद। चरण कमल की मौज में है, रहो अंत अर आद। कबीर चरण कमल की मौज को, कह कैसे उन्मान। कह बे को शोभा नहीं, देखा ही परवान। कबीर देख कै कह कहो, कहे ना को पति आए। हर जैसा तैसा उही रहो, हरख गुन गाए। कबीर चुगे चेतारे, पी चुगे चुग चुग चेतारे। जैसे बच रहे कूंज मन, माया ममतारे। कबीर अंबर कनहर छाया, बरख परे सरताल। चातरक ज्यो तरसत रहे, तन को कौन हवाल। कबीर चकई जो निसबिछरे, आए मिले परपात। जो नर बिछरे राम सियों, ना दिन मिले ना रात। कबीर ने रायर, कबीर रे नायर भी शोरिया, रोहरे संख मजूर। देवल देवल ताहड़ी, देसह उगवत सूरा।

कै जाने आपन तनी कै दास दीवानी होए। कबीर पली पही जो पौ परिया दिशा गई सब भूल, उरा गर पानी पया जाए मिलियो टल कूल। कबीरा तूर सकेल कै पुरिया बादी देह,

चांद कै उदय सई पई सब देह, गुर गोबिंद के बिन मिले पलट पई सब खेह। जह अनपौ तह पै नहीं, जह पौ तह हर नाहे, कहयो कबीर विचार कै संत सुनहो मन माहे। कबीर जिन्हो किछु जानिया नहीं, तिन सुख नींद बिहाए। हम हो जो बूजा बूजना पूरी परी बलाए। कबीर मारे बहुत पुकारिया, पीर पुकारे और, लागी चोट मरम की रहे ओ कबीरा ठार। कबीर चोट सहेली सेल की लागत ले उसास, चोट सहारे शब्द की तास गुरु मैं दास। कबीर मुला मनारे क्या चढ़ है साई ना बहरा होए, जा कारण तू बांग दे दिल ही पीतर जोए। सेख सबूरी बाहरा क्या हज काबे जाए, कबीर जा की दिल साबत नहीं ताको कहां खुदाए। कबीर अलह की कर बंदगी जह सिमरत दुख जाए, दिल में साई प्रगट बुझे बलंती नाए। कबीर जोरी किए जुल्म है कहता नौ हलाल, दफ्तर लेका मांगी है तब होए गो कौन हवाल। कबीर खूब खाना खीचरी जाह में अमृत लोन, हेरा रोटी कारने गला कटावे कौन। कबीर गुर लागा तब जानिए मिटे मोह तन ताप, हरक सुगदा जे नहीं तब हर आप है आप। कबीर राम कहन मह भेद है,

कबीर रामे राम कहो, कहबे माही विवेक, एक अनेक है मिल गया, एक समाना एक। कबीर जा कर साधना सेवी है, हर की सेवा नाहे, ते कर मरहट सारखे, भूत बस है तिन माहे। कबीर गूंगा हुआ बावरा, बहरा हुआ कान, पाव होते पिंगल पया, मारे

निर्मल बूंद आकाश की पर गई भूम बेकार, बिन संगत एओ मानई होए गई पठचार। कबीर निर्मल बूंद आकाश की लीनी भूम मिलाए, अनक सियाने पच गए ना निर्वैरी जाए। कबीर हज काबे हो जाए था आगे मिलिया खुदाए, साई मुझ स्यो लर परया तुझे किन फुरमाई गाए। कबीर हज काबे होए होए गया केती बार कबीर, साई मुझ में क्या खता मुकहो न बोले पीर। कबीर जी जो मर है जोर कर, कहते है जो हलाल दफ्तर दई जब काट है होएगा कौन हवाल। कबीर जोर किया सो जुल्म है ले जवाब खुदाए, दफ्तर लेखा निकसै मार मुहे मुहे खाए। कबीर लेखा देना सोहेला जो दिल सूची होए, उस साचे दी बान में पला न पकड़ै कोए। कबीर तरती आकाश में दोए तू बरी अबद, खट दर्शन संसे पर अर चौरासी सिद। कबीर मेरा मुझ में किश नहीं, जो किश है सो तेरा, तेरा तुझको सौंपत है क्या लागे मेरा। कबीर तू तू करता तू हुआ मुझ में रहा न हूं, जब आपा परका मिट गया जत देखो तत तू। कबीर बिकारे चितवते झूठे करते आस, मनोरथ कोए ना पूरे ओ चाले ऊट निरास। कबीर हर का सिमरन जो करे सो सुखिया संसार, इत उत कत है ना डोलई जो राखे सृजन हार। कबीर कहानी पीड़त है सतगुर लिया छाए, परा पूर्वली भावनी प्रगट होई आए। कबीर टाले टाले दिन गया ब्याज बढ़न तो जाए, ना हर पजयो ना खत फट्यो काल पहुंचो आए। महला पंजमा, कबीर कुकर भौंकना करंग पिछे उठ ताए, करमी सतगुर पाया जिन हो लिया छडाए। महला पंजमा, कबीर धरती सादकी तस्कर बैस है गाहे, धरती पार न ब्यापई उनको लाहू लाहे। महला पंजमा, कबीर चावल कारण तुक को मोहली लाए, संग कसंगी बैसते तब पूछे धर्म राए। नामा माया मोहया कहे तलोचन मीत, काहे शीप हो छाए ले राम न लाभ हो चीत।
ਨਾਮਾ ਕਹੈ ਤਿਲੋਚਨਾ ਮੁਕਤੇ ਰਾਮ ਸਮਾਲ। ਹਾਥ ਪਉ ਕਰ ਕਾਮ ਸਭ ਚੀਤ ਨਿਰੰਜਨ ਨਾਲ। ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ ਕਬੀਰਾ ਹਮਰਾ ਕੋ ਨਹੀਂ ਹਮ ਕਿਛੁ ਕੈ ਨਾਹੇ। ਜਿਨ ਇਹ ਰਚਨ ਰਚਾਇਆ ਤਿਸ ਹੀ ਮਾਹੇ ਸਮਾਹੇ। ਕਬੀਰ ਕੀਚੜ ਆਟਾ ਗਿਰ ਪਰਿਆ ਕਿਛੁ ਨਾ ਆਇਓ ਹਾਥ। ਪੀਸਤ ਪੀਸਤ ਚਾਬਿਆ ਸੋਈ ਨਿਭਿਆ ਸਾਥ। ਕਬੀਰ ਮਨ ਜਾਣੇ ਸਭ ਬਾਤ ਜਾਣਤ ਹੀ ਔਗਨ ਕਰੈ। ਕਾਹੇ ਕੀ ਕੁਸਲਾਤ ਹਾਥ ਦੀਪ ਕੁਏ ਪਰੈ। ਕਬੀਰ ਲਾਗੀ ਪ੍ਰੀਤ ਸਜਾਨ ਸਿਓ ਬਰਜੇ ਲੋਗ ਅਜਾਨ। ਤਾ ਸਿਓ ਟੂਟੀ ਕਿਉ ਬਿਨਾ ਬਣੈ ਜਾ ਕੈ ਜੀ ਪਰਾਨ। ਕਬੀਰ ਕੋਠੇ ਮੰਡਪ ਹਿਤ ਕਰ ਕਾਹੇ ਮਰਹੋ ਸਵਾਰ। ਕਾਰਜ ਸਾਡੇ ਤੀਨ ਹੱਥ ਕਨੀ ਤਾਂ ਪੌਨੇ ਚਾਰ। ਕਬੀਰ ਜੋ ਮੈਂ ਚਿਤਵੋ ਨਾ ਕਰੈ ਕਿਆ ਮੇਰੇ ਚਿਤਵੈ ਹੋਏ। ਆਪਣਾ ਚਿਤਵਿਆ ਹਰ ਕਰੈ ਜੋ ਮੇਰੇ ਚਿਤ ਨਾ ਹੋਏ। ਮਹੱਲਾ ਤੀਜਾ ਚਿੰਤਾ ਪੈ ਆਪ ਕਰਾਏ ਸੀ ਅਚਿੰਤ ਪੈ ਆਪੇ ਦੇ। ਨਾਨਕ ਸੋ ਸਲਾਹੀਐ ਜੇ ਸਭਨਾ ਸਾਰ ਕਰੇ। ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ

कट मह जियो के पियो। कबीर बामन गुरु है जगत का, भगतन का गुर नाही। अर्ज उर्ज कै पचमुआ, चारो बेद हो माहे। हर है खाड रेत मह, बिखरी हाथी चुनी न जाए। कह कबीर गुर भली बुझाई, कीटी होए कै खाई। कबीर जो तोहे साध पे रम की, शीस काट कर गोए। खेलत खेलत हाल कर, जो किश होए ता होए। कबीर जो तुहे साध परम की, पाके सेती खेल। काची सरसो पेल कै, ना खल पही ना तेल। ढूंढत डोलह अंधगत, अरचिनत नाही संत। कह नामा क्यों पाईए, बिन भगत हो भगवंत। हर सो हीरा छाड़ कै, करह आन की आस। ते नर दोजक जाहेंगे, सत पाखे रविदास।

फरीदा जंगल जंगल क्या पवे वन कंडा मोड़े हे वसी रब हयाली है जंगल क्या टुंडे हे।

बीजो सिजो कंबली अल्हे वरसो में हो जाए मिला तिना सजना टूटो नाही ने हो। फरीदा मैं पोलावा पगदा मत मैली होए जाए गहला रूह ना जानी सिरपी मिट्टी खाए। फरीदा शक्कर खंड निवात गुड़ माखियो माजा दुध सबे वस्तु मिठियां रब ना पूजन तुद। फरीदा

साहुर है पिय कंथ की कंत अगम अथाहो नानक सो सुहागणी जो पावै बेपरवाहो। नादी धोती संभी सुती आए नचिंद फरीदा रही सो बेड़ी हिंज दी गई कथूरी गंद। जोबन जांदे ना डरां जे सह प्रीत ना जाए फरीदा कीती जोबन प्रीत बिन सुक गए कुमलाए। फरीदा चिंत खटोला वाण दुख बिरहे विछालण लेफ एहो हमारा जीवना तू साहिब सच्चे वेख। बिरहा बिरहा आखिए बिरहा तू सुल्तान फरीदा जित तन बिरहो ना उपजै सोतन जान मसान।

तन खीण होए लो ब्रत विछों जाए ज्यों बैसंतर तात सुद होए त्यों हर का पो द्रुमत मैल गवाए नानक तेजन सोहणे जे रते हर रंग लाए फरीदा सोई सरवर टूंड लहो जिथों लभी वथ छप्पड़ टूंडै क्या होवै चिकड़ डुबै हथ।

इस तत्ती तोय ना पलवै जे जल टुबी दे फरीदा जो डुहागण रब दी चुरेंदी चुरे जा कुआरी ता चाओ विवाही ता मामले फरीदा इहो पछताओ वत कुआरी ना थिए कलर केरी छपड़ी आए उलथे हंज चिंजू बुड़न ना पीवे उड़न संधि डांज हंस उडर कोदरै पया लोक विडारण जाए गहला लोक ना जानदा हंस ना क्रोधा खाए चल चल गईया पंखियां जिनी वसाए तल फरीदा सर परिया पी चल सी थके कबल इकल फरीदा इट सिराने पोए सवन कीड़ा लड़्यो मास केतड़िया जुग वापरे इकत पया पास फरीदा पन्नी कड़ी सवन भी टूटी नागर लज अजराइल फरिश्ता कह कर नाठी अज फरीदा पन्नी कड़ी सवन भी टूटी नागर लज जो सज्जन पोए भार थे से क्यों आवे अज फरीदा बे निवाजा कुत्तियां एहो ना भली रीत कभी चल ना आया पंजे वक्त मसीत उठ फरीदा अजू साज सुबह निवाज गुजार जो सिर साई ना निवै सो सिर कप उतार जो सिर साई ना निवै सो सिर की जय काए कुने हेठ जलाये बालन संदे थाए फरीदा की थै तैडे मापिया जिनी तू जने ओ हे तै पास ओए लद गए तू अजय ना पतीनो हे फरीदा मन मैदान कर टोए टिबे लाहे अगै मूल ना आवसी दोजक संधि पाहे महला पंजवा फरीदा खालक खलक मैं खलक वसै रब माहे मंदा किसनो आखिए जा तिस बिन कोई नाहे फरीदा जे देहे नाला कपया जे गल कफे चुख पवन ना इति मामले सहा ना इति दुख चबन चलन रतन से सुनियर बहे गए हेड़े मुती ताह से जानी चल गए फरीदा बुरे दा पला कर गुस्सा मन ना हंडाए देही रोग ना लगई पल्ले सब किछ पाए फरीदा पंख प्राहुणी दुनी सुहावा बाग नौबत वजी सुबह स्यों चलन का कर साज फरीदा रात कथूरी वंडिये सुत्या मिले ना पाओ जिना नैन निंद्रावले तिना मिलन कुआओ फरीदा मैं जानिया दुख मुझ को दुख सुभाये जग ऊचे चढ़के देखिया ता कर कर एहा अग महला पंजवा फरीदा भूम रंगावली मंज विसूला बाग जो जन पीर निवाजिया तीना अंच ना लाग महला पंजवा फरीदा उम्र सुहावड़ी संग सुवनड़ी देहो विरले केई पायन जिना प्यारे ने हो कंदी वहन ना टाहे तो पी लेखा देवना जित रबर जाए वहन तिदाऊ गौ करे फरीदा दुखा सेती देहो गया सुला सेती रात खड़ा पुकारे पातनी बेड़ा कपर वात लम्मी लम्मी नदी वह कंदी की रह हेत बेड़े नो कपर क्या करे जे पातन रह सुचेत फरीदा गली सो सज्जन वीह एक टुंडेंदी नाल हां तुखां ज्यों मालीह कारण तिना मापिरी
ਵ੍ਰਿਧਾ ਇਹੋ ਤਨ ਪੌਂਕਣਾ ਨਿਤ ਨਿਤ ਦੁਖੀਐ ਕੌਣ ਕੰਨੀ ਬੁਝੇ ਤੇ ਰਹਾ ਕੀਤੀ ਵਗੈ ਪੌਣ। ਵ੍ਰਿਧਾ ਰੱਬ ਖਜੂਰੀ ਪੱਕੀਆਂ ਮਾਖਿਆ ਨਹੀਂ ਵਹਨ ਜੋ ਜੋ ਵੰਗੈ ਡੀਹਣਾ ਸੋ ਉਮਰ ਹੱਥ ਪਵਨ। ਫਰੀਦਾ ਤਨ ਸੁੱਕਾ ਪਿੰਜਰ ਥੀਆ ਤਲੀਆਂ ਖੁੰਡੇ ਕਾਗ ਅਜੈ ਸੋ ਰੱਬ ਨਾ ਬਾਹੁੜਿਓ ਦੇਖ ਬੰਦੇ ਕੇ ਪਾਗ।

0: परलो एकै निमख तूं कर। आन नाहीं समसर उजियारो निर्मर कोट प्राछत जाहे नाम लिए हर हर। जन नानक भक्त दर तुल ब्रह्म समसर एक जिह क्या बखानै। हाँ कै बल बल बल बल सद बलिहार सगल पवन तारे एक थे किए बिस्थारे। पूर्यो सर्मे आप है निरारे हर गुण नाहीं अंत पारे। जिए जंत सब थारे सगल को दाता एकै अलख मुरारे। आप ही तारण तारे कुदरत है देखारे। बरन चिहन नाहीं मुख नाम सारे। जन नानक भक्त दर तुल ब्रह्म संसर एक जिहे क्या बखानै। हाँ कै बल बल बल बल सद बलिहार सर्ब गुण निदानं कीमत ना ज्ञानं। ध्यानं ऊचे ते ऊचो जानी जय प्रभ तेरो थानं। मन तन तेरो प्राणं एक कै सूत है जहानं। कवन उपमा देओ बड़े ते बडानं। जानै कौन तेरो पेओ अलख अपार देओ। अकल कला है प्रभ सर्ब को तानं। जन नानक भक्त दर तुल ब्रह्म संसर एक जिहे क्या बखानै। हाँ कै बल बल बल बल सद बलिहार। निरंकार अकार अछल पूरन अविनाशी हरखवंत अनंत रूप निर्मल बेगासी। गुण गावै बेअंत अंत एक तिल नहीं पासी। जाको होहे कृपाल सोजन प्रभ तुम्हें मिलासी। तन तन ते तन जन जेहे कृपाल हर हर पयो। हर गुरु नानक जिन परस्यो से जन्म मरण दोहथे रहयो। सत सत हर सत सत सत्ते सत पणियै। दूसर आन न अवर पुरख पौरातन सुनियै। अमृत हर को नाम लैत मन सब सुख पाए। जेहे रसन चाख्यो तेहे जन तृप्त अगाए। जे ठाकुर सो प्रसन्न पयो सत्संगत तेहु प्यार। हर गुरु नानक जिन परस्यो तिन सब कुल कियो उदार। सच सबादी बाण सच सच्चे पहे तरयो। सच्चै तख्त निवास सच तपावस करयो। सच सिरंजियो संसार आप आपुल ना पुल्लो। रतन नाप अपार की मनहु पवै अमुल्लो। जेहे कृपाल होयो गोबिंद सर्ब सुख तिन्हु पाए। हर गुरु नानक जिन परस्यो ते बहुड़ फिर ज्योन ना आए। कवन जोग कवन ज्ञानं ध्यान कवन बिद उस्तत करिय। सिद्ध साधक ते तिस कोर तिर कीम ना परिय। ब्राह्मेदिक सनकाद सेख गुण अंत ना पाए। अघो गयो नहीं जाए पूर सर्ब रहियो समाए। जे काटे सिलक दयाल प्रभ से जन लगे पगते। हर गुरु नानक जिन परस्यों ते उत सदा मुकते। प्रभ दातो दातार पर्यो जाचक एक सरना। मिले दान संतरेन जेहे लग पौ जल तरना। बिनत करो अरदास सुनो जे ठाकुर भावै। देहो दर्श मन चाओ भगत एहो मन ठहरावै। बलियो चराग अंधियार मह सब कल उदरी एक नाम धर्म। प्रगट सगल हर पवन महें जन नानक गुरु पार ब्रह्म। सवैये श्री मुख बाक्य महला पंजवा एक ओंकार सतगुर प्रसाद। काची देहो मोह फुन बांदी सठ कठोर कुचील कुज्ञानी। तात प्रमत रहन नहीं पावत पा ब्रह्म की गत नहीं जानी। जोबन रूप माया मदमाता विचरत बिकल बडो अभिमानी परतन पर अपवाद नार निंदा ये मिठी जे माहे हितानी बलबंच छप कर तुपावा पेख सुनत प्रबंत्र जामी सील त्रम दया सुच नास्त आयो सरंजीय के दानी कारण करण समर्थ श्री तर राख लिहो नानक के स्वामी कीर्त करन सरन मनमोहन जोहन पाप विदारन को हर तारन तरन समर्थ सबै विद कुले समु उदारन सो चित चेत चेत जान सत्संगत परम अंधेर मोहयो कत तो मूरत करी च सापल सिमरन राम नाम रसना संग लो होछो काज अल्प सुख बंधन कोट जन्म कहाँ दुख पो सिख्या संत नाम पज नानक राम रंग आत्म स्यों रो रंचत रेत खेत तन निर्मत दुर्लभ देह सवार तरी खान पासो दे सुख पुंज संकट काट बिपत हरी मात पिता पाई अर बंदप भूजन की सब सूज परी वर्धमान होव दिन प्रत नित आवत निकट बिखम जरी रे गुनहीन दीन माया क्रम सिमर स्वामी एक करी कर गह लिहो कृपाल कृपा निद नान काट परम परी रे मन मूस बिला मैं गर्भत करतब करत महामुंगना संपत दोल चोल संग चूरत माया मगन प्रमत कुंगना सुत बनेता साजन सुख बंदप तां स्यो मोह बड्यो सो कना बोयो बीज अहं मम अकुर बीतत औद करत अंगना मृत मंजा पसार मुख निरखत पुंचत पुगत पुख पुखना सिमर गोपाल दयाल सत्संगत नानक जग जानत सुपना देहो ना गेहो नाने हो नानीता माया मत कहा लो गारो छतर ना पत्र ना चोर ना चार भती जा हृदय ना विचारो रथ ना असव नागज सिंहासन छिन में त्यागत नाग सिदारो सूर ना वीर ना मीर ना खानम संग ना दो दृष्ट निहारो कोट ना ओट ना कोस ना छोटा करत बिकार दो कर चारो मित्र ना पुत्र कलत्र साजन सक उल्टत जात बिरख की छारो दीन दयाल पुरख प्रपूरन छिन छन सिमरो अगम अपारो श्रीपत नासरण नानक जन हे भगवंत कृपा कर तारहो प्राण मान दान मग जोहन हीर चीत दे ले ले पारी साजन सैन मील सुत पाई ताहू ते ले रखी निरारी तावन पावन कूर कमावन एह बिद करत औद तन जारी क्रम त्रम संजम सुच नेमा चंचल संग सगल बिद हारी पशु पंखी बिरख अस्थावर बहु बिद जोन परम्यो अत पारी खिन पलचसा नाम नहीं सिमर्यो दीना नाथ प्राणपत सारी खान पान मीठ रस पोजन अंत की बार होत कत खारी नानक संत चरण संग उदरे होर माया मगन चले सब डारी ब्रह्मादिक सेव छंद मुनिस रसक रसक ठाकुर गुण गावत इंद्रा मनिंदर खोजते गोरख तरण गगन आवन फुन तावत सिद्ध मनुख्य देव अर दानव इक तिल ताको मर्म ना पावत प्रे प्रभ प्रीत प्रेम रस भगति हर जन ताकै दर्श समावत तिसे त्याग आन को जाचे मुख अदंत रसन सगल कस जावत रे मन मूड सिमर सुख दाता नानक दास तुझे समझावत माया रंग बिरंग करत प्रम मोह कै कूप गुबार पर्यो है एता गब आकाश नामावत बिष्टा अस्त क्रिम उदर पर्यो है द दिस्ताय महाबिख्या को परतन छीन अज्ञान रहियो है जोबन बीत जरा रोग ग्रस्यो जम तूतन डन मृत मर्यो है अनेक जो संकट नरक पुंचत सासन दुख गर्त गर्यो है प्रेम भगत उदरे से नानक कर कृपा संत आप करयो है गुण समूह फल सगल मनोरथ पूरन होई आस हमारी औखद मंत्र तंत्र पर दुख हर सर्व रोग खंडन गुणकारी काम क्रोध मदमत सर तृष्णा बिनस जाय हर नाम उचारी इस नान दान तापन सुचे किरिया चरण कमल हृदय प्रभु तारी। साजन में सखा हर बंदप जिय तान प्रभु प्राण दारी ओढ़ गई स्वामी समरथे नानक दास सदा बलिहारी। आवद कट्यो ना जात प्रेम रस चरण कमल संग दावन बंद्यो ना जात बीते मन दर्श मग पावक जरयो ना जात रहयो जन तूर लग नी ना साक्ष बोर चले हर पंथ पग नानक रोग दोग अग मोह छीते हर नाम खग। उदम कर लागे बहुपाती बिचरे अनेक शास्त्र बहु खटुआ पसम लगाए तीरथ बहु भ्रम ते सूखम देहो बंदे बहु जटुआ बिन हर भजन सगल दुख पावत ज्यों प्रेम बढ़ाए सूत के हटुआ पूजा चकर करत सों पाका अनेक पांत थाटे कर थटुआ। सवैये महले पहले के पहले एक ओंकार सत गुर प्रसाद एक मन पुरख त्याए बरदाता संत सहार सदा बिखयाता ता चरण ले हृदय बसाओ तो ब्रह्म गुरु नानक गुण गावो गावो गुण ब्रह्म गुरु सुख सागर दुर्त निवारण सर्ब सरे गावे गंभीर तीर मत सागर जोगी जंगम त्यान तरे गावे इंद्राद भगत प्रहलादिक आत्म रस जिन जान्यो कब चल सोजस गावो गुरु नानक राज जोग जिन माण्यो गावे जनका जुगत जोगेसर हरस पूर्ण सर्ब कला गावे सनका साध सिदादिक मुन जन गावे अचल छला गावे गुण तोम अटल मंडल वै भगत पाए रस जान्यो कब कल सोजस गावो गुरु नानक राज जोग जिन माण्यो गावे कपिलाद आद जुगेसर अपरंपर अवतार वरो गावे जमदग्न परमावेसर कर ठाकुर रग तेज हरयो ऊदो अक्रूर बिदर गुण गावे सर्वात्म जिन जान्यो कब कल सोजस गावो गुरु नानक राज जोग जिन माण्यो गावे गुण बरन चार खट दर्शन ब्रह्मादिक समर्थ गुना गावे गुण शेष अस जेबा रस आद अंत लिव लाग तुना गावे गुण महादेव बैरागी जिन ध्यान निरंतर जान्यो कब कल सोजस गावो गुरु नानक राजोग जिन माण्यो राज जोग माण्यो बस्यो निर्वैर रिदंतर सृष्ट सगल उदरी नाम ले तरयो निरंतर गुण गावे सनकाद आद जनकाद जुग हे लग तन तन गुर तन जन्म सक्यथ पलो जग पताल पुरी जयकार तुन कब जन कल बखाण्यो हर नाम रसक नानक गुर राज जोग तै माण्यो
1: द्वापर कृष्ण मुरार कंस कृतार्थ कियो हुकर सैन को राज पय भगत जन तियो कलजुग प्रमाण नानक गुर अंगद अमर कहायो श्री गुरु राज अब चले अटल आदि पुरख फरमायो गुण गावा रविदास भगत जय देव त्रिलोचन नामा भगत कबीर सदा गावा समलोचन भगत बेन गुण रवै सहज आत्म रंग माणा जोग ध्यान गुर ज्ञान बिना प्रभ वरना जाना सुख दियो परीखत गुण रवै गोतम रेख जस गायो कब काल सुजस नानक गुर नित नावतन जगछायो गुण गावा पयाल भगत नागाद पुयंगम महादेव गुण रवै सदा जोगी जत जंगम गुण गावा मन ब्यास जिन वेद व्याकरण विचारे ब्रह्मा भगुण विचरै जिन हुक्म सब श्रेष्ठ सवारे ब्रह्मांड खंड पूर्ण ब्रह्म गुण निर्गुण सम जान्यो जाप काल सुजस गाव गुर नानक सहज जोग जिन मान्यो गुण गाव नव नाथ धन गुर साच समायो मां ताता गुण रवै जिन चक्र वह कहायो गुण गावै बल राव सपत पताल बसंतो परथर गुण उचरै सदा गुण संग्रहंतो दुर्बा परूरो अंगरै गुरु नानक जस गायो कब कल सुजस नानक गुर कट कट सहज समायो सवैये महले दूजे के एको अंकार सतगुर प्रसाद सोई पुरख धन करता कारण करतार करन समर्थो सतगुरु धन नानक मस्तक तुम धरियो जिन हथो ता धरियो हाथ मस्तक हाथ सहज अम्यो बुठो छज सुर नर गुमा गण मुन गोहे अगाज मारियो कारण कंट काल गर्ज तावत लियो बरज पंच भूत एक घर राख ले समझ जग जीतो गुरद्वार खिले समसार रथ उन्मन लिव राख निरंकार कहो कीरत काल सहार सपत दीप मझार लहना जगतर गुर परस मुरार जाकी दृ

जाना पानी लाहा जैसे थी मेरा संग, जित डिठे तन पर फुड़े चढ़े चवकड़वाना। राज न कोई जीविया पहुँच न चलिया कोहे, ज्ञानी जीवे सदा सदा सुरती ही पत होए। सरफे सरफे सदा सदा एवे गई विहाए, नानक किसनु आखिए विण पुछया ही ल जाए। दोष न दियो राय नू मत चले जा बुढ़ा होवै, गल्ला करे कनेरियां ता अन्ने पवना खाती टोवै। पूरे का क्या सब किश पूरा घट वध किश नाही, नानक गुरमुख ऐसा जाने पूरे महे समाही। श्लोक महला तीजा, एक ओ अंकार सतगुर प्रसाद। अभ्यागत ये ना आखिया जिनके मन में भरम, तिनके दिते नानका ते हो जे हा धर्म। अभय निरंजन परम पद ताका पीख कोए, तिसका भोजन नानका विरला पाए कोए। हुआ पंडित ज्योत की वेद पढ़ा मुखचार, नवा खंडा विच जानिया अपने चज विचार। ब्राह्मण कैली काल कंच का अनचारी का तान, फिटक फिटका कोड़ बदिया सदा सदा अभिमान। पाहे इते जाहे विसर नानका इक नाम। सब बुद्धि जालियां इक रहे तत् ज्ञान, माथे जो तुर लिखिया सो मेट न सके कोए। नानक जो लिखिया सो वर्तदा सो बूझे तिसनो जिसनु नदर होए।

पुत कलत मोहित है अंत बेली को ना सखाई। सदगुरु सेवे सो सुख पाए ना हो बसे मन आई। नानक से वड्डे वड भागी जे गुरमुख नाम समाई। मनमुख नाम न चेतनी बिन नावे दुख रोए। आत्मा राम न पूजनी दूजे क्यों सुख होए। होमे अंतर मैल है शब्द न काढे धोए। नानक बिन नावे मैलिया मुए जन्म पदार्थ खोए। होमे अंतर मैल है शब्द न काढे धोए। नानक बिन नावे मैलिया मुए जन्म पदार्थ खोए। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। आईया संगतां दा धन्नवाद है जो गुरबाणी सुन के अपना जन्म सवार कर रही सन। सो हुण आप जी नूं संध्या वेले दे कीर्तन की शुरुआत हो रही है। सो भाई साहब भाई हरजीत सिंह जी चमक अते उन्हां दा जथा आप जी नूं कीर्तन नाल जोड़नगे। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह।